मुझको यकीन। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

रेडियो गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

झाने जाने को दारी दाम तारी के।

الله الله الله.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन आ चुका हूं लेकर आज का 90 न्यू स्पेशल के ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम और सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: बिल्कुल इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज भाई, सरपू पंडित जी साउथ अफ्रीका से, वालेकुम असलम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और जुड़ने वाले में हमारे MD जमीरुल जी, बहुत बहुत वेलकम है MD जमीरुल जी, ये तमिलनाडु से हैं। और हमारे ये लाखन मालाकार जी हैं, वेलकम करते हैं लाखन मालाकार जी। और सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। और हमारे अशोक देशमुख जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अशोक देशमुख जी। साथ ही साथ जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल है सुनीता गोपी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता गोपी, सहकला झारखंड से। और आर्य सिंधी जी गांधीनगर गुजरात से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन अभी हैं फिलहाल यानी कि तमिलनाडु चेन्नई में, ओके। और आत्माराम पाटिल जी हैं लीहा बुल्ढाना महाराष्ट्र से, वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़े वाले दोस्तों में सर्वजीत शेट्टी जी फाजिलका पंजाब से हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये साहब MD यानी कि सलीम जी जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बहुत मोहम्मद सलीम साहब वेलकम करते हैं, ये हैं यानी कि सीतापुर से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और हमारे अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अभिषेक तिवारी जी, ओके। और यानी कि विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, राधे राधे सभी को कह रहे हैं। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सरायकेला झारखंड से, ये भी हैं। और साथ ही साथ जाकिर खान जी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, वेलकम है आपका भी, वालेकुम अस्सलाम। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी, अगर गाने की डिमांड है तो प्लीज़ गाने का बोल जरूर लिख के भेजेंगे मुझे। और मुबारक हुसैन जी भाई, मुबारक हो, आप जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल है हमारे इन पीकू राय जी, वेलकम करते हैं पीकू राय जी आपका भी। और हमारे M ताहिर साहब जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सभी दोस्तों को नमस्ते नमस्कार कह रहे हैं। हुकुम चंद जागर जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, नमस्कार सभी को कह रहे हैं। हमारी माँ जी नंदरी माँ जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं माँ जी आपका भी। और आशीर्वाद की जरूरत है क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आज तो यानी सिर में तेल लगवा कर मैं आया हूँ घर से, इन पहन लगा दिए क्योंकि हिम्मत नहीं है कि मुझे बोलने का, लेकिन फिलहाल मैं ये क्या ही कहूँ। और दत्तक कदम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्तक कदम जी। और मनीषा शर्मा जी आपका भी वेलकम है, और संध्या पटेल जी वेलकम दीदी आपका भी। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है, जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सबसे पहले M ताहिर जी के पास चलते हैं।
1: अमन सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और सर जी कैसे हो?
0: बहुत अच्छे
1: हैं। मैं M ताहिर बढ़ापुर बिजनौर से।
0: वेलकम जी।
1: सर जी,
0: जी
1: कुछ लोग दिल के इतने करीब होते हैं कि मानो जिस्म अलग हो पर एक धागे से बुनी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूरी चाहे कितनी भी उनके साथ हो पर सच्चे रिश्तों का एहसास दूरियों से नहीं घटता।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है।
1: और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आज मुझे एक गाना सुनना है। जी
0: जी जी बताइए।
1: कि आपकी याद आए तो दिल क्या करे।
0: क्या बात है, क्या
1: फिल्म का नाम है, आपको पहले भी कहीं देखा है?
0: बिल्कुल देखा है।
1: क्योंकि कभी कभी किसी की इतनी शिद्दत से इतनी गहराई से याद आती है कि दिल संभलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी ही खूबसूरत एहसास और अधूरेपन में मेरी तरफ से ये नगमा मेरी जानिब से समझ लीजिए आपको सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: और ख़ास करके कायनात जी को और दोस्त हैं हमारे कुछ सोनू गौतम जी, सुनील कुमार जी बांके बिहार वाले, सभी को मेरी तरफ से और सुनने वाले सभी साथियों को इस समय जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, शो सुन रहे हैं, उनको मेरी जानिब से ये गाना डेडिकेट है। सर जी तो प्लीज इस गाने को सुना दीजिए।
0: वादिया, शुक्रिया।

0: बिल्कुल आपकी याद आए तो दिल क्या करे क्या करे क्या करे। वैसे फिर बैग भी आ गया है तो हम क्या करें क्या करें क्या करें। पहला ये
1: जय अम्मा सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यानी कि पीकू राय जी लिखते हैं कि आपकी याद आए तो दिल क्या करे। और ओके जी, और यहाँ पे मतलब यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी का गाना मुझे बहुत ही मस्त लगा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नंदलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मनीषा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और गजानंद सरकार जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी हमें जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना कुमारी जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मीना कुमारी जी आपका भी। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन खान साहब जब आप नगमा पेश करते हैं तो यूं लगता है मानो हर लफ्ज में मोहब्बत की रूह ढल गई हो, आपकी आवाज में वो नशा है और एहसास की वो तड़प झलकती है कि सुनने वाला अपना सब कुछ भूलकर बस उस गाने में और इन प्यार में डूबता चला जाता है। आपके लबों से जब आपके गीत की तारीफ निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे अल्फाज खुद खुशकिस्मत हो गए हैं। वाकई क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गाने को प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए। नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ आज बिना देर के वे सुनीता गोप जी का, तो सुनीता गोप जी आज आपको शिकायत का मौका मिलने वाला नहीं है क्योंकि आज मैं आपके गाने को पूरा पूरा बजाने वाला हूँ, मतलब हल्का सा कट करूँगा थोड़ा सा, लेकिन मैं पूरा बजाऊँगा जरूर। तो सुनवाते हैं आज का ये गाना सुनीता गोप जी की। ये सुनना चाहते हैं कि कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, अरे जब से मोहब्बत ही है सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही करते हैं। एंजॉय कीजिए इस गाने को। और नाम घूम जाएगा ये गाना, माय गॉड फेवरेट गानों में से एक है। थैंक यू सो मच।

0: हमारे पास आ चुके हैं, तो शामिल करते हैं। और एमडी फैज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम भाईजान आपका भी। और निशांत राय बोल लीजिए कि हम भी जुड़ गए हैं जी। वेलकम है आपका निशांत राय बोले जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अजय अमन सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं सुनीता गोप जी के पसंद बेहतरीन लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया एकदम सुन के। और पिकू राय जी लिखते हैं कि जी सर जी बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया, ओके जी। और यहाँ संध्या जी लिखती हैं, संध्या पटेल जी, की आज तो एक से बढ़ के एक गाने मिल रहे हैं जी, वाह क्या बात है। और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, ओके जी। अब खुश है ना एकदम, क्योंकि आज मैंने पूरा गाना प्ले किया है। हमेशा कट करता हूँ लेकिन आज मैंने कहा था कि चलो आज इनका पूरा बजा ही देता हूँ मैं। इसके बाद बात यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही शानदार गाना सुनवाने को मिला, थैंक यू सो मच सुनीता गोप जी आपका। मीना जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की पसंद बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी, जो ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुनीता गोप जी मेरी यानी हम अपनी श्रीमती जी पास खुश हो गए हैं, क्योंकि गाना सच में बहुत दमदार था, मजा आ गया है। और निशांत राय वो लिखते हैं कि सच में गाना बहुत ही लाजवाब था। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मनीषा जी के हैं। मनीषा जी सुनना चाहती हैं बेशक तुम मेरी मोहब्बत, बिल्कुल इंजॉय कीजिए।

0: बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। वैसे नीतू संजीत ने गाना बहुत ही अच्छा लगा है। ओके जी, और यहाँ पे रवि महर्जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, वेलकम है रवि महर्जी आपका भी। और पिकुराज जी लिखते हैं कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत है, नंबर वन गाना है, मजा आ गया सुन के। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, गाना बहुत ही प्यारा, वाओ मजा आ गया सुन के। दत्ता जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद बहुत ही सुपर टूपर हिट लगी है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक लेते हैं
1: जी। अमन सर जी, मनीषा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं ये फीडबैक।
2: अमन खान सर जी,
0: जी
2: रेडियो साथी सुनीता गोपी, इनकी पसंद बहुत ही अप्रतिम और सुरेख, दिल खुश हो गया, आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोपी देते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नंदलाल जी देते हैं बहुत शानदार गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और विकास गडकरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत बढ़िया गाना सुनने को मिला अमन जी, थैंक यू सो मच। और मनीषा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और हमारे गजानन सरकार जी लिखते हैं कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू मनीषा जी। ओके, अगला जो डिमांड है वो शाहिद जी का है, लिखते हैं कि मैडम एक्स का गाना सुनना है कि कैसे दिल जीते आपका, आप ही बता दो फिर रास्ता।

बिल्कुल, तो बता दीजिए कि कैसे दिल जीते आपका, आप ही बता दे को रास्ता। और वैसे मेरे पास फीडबैक भी आ चुके हैं आपकी कुराज देखते हैं कि हमें तो ये ताहिर जी की पसंद बहुत ही पसंद आई है, और बीच बीच में चंद्र जी देखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना था, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और मनीष शर्मा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और गोविंदा खंडादे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। दत्ता जी लिखते हैं कि शाहिद जी के पसंद बहुत ही अच्छा लगा है। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। अगला जो डिमांड है गीता शरण जी का, ये सुनना चाहती हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो आपको दीवाना बना दे, अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं कि यानी कि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो आप भाई आपको स्पेशल रिक्वेस्ट भेजना चाहिए था ना, ये बताइए। अभी मैं स्पेशल क्या कर सकता हूँ, इस समय तो पॉसिबल भी नहीं है। स्पेशल रिक्वेस्ट भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 3 दिन पहले ओपन होता है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और लेकिन आपको आपकी बेटी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका फोटो भेजिएगा, उनके लिए मैं पोस्टर बनाऊंगा, जरूर आपको भेज दूंगा। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और पिकू राय जी लिखते हैं कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, सुपर डुपर हिट गाना है, मजा आ गया सुन के। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम करते हैं आपका भी। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, सच में बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और विकास गडकरी जी लिखते हैं कि आशिकी के सभी गाने सुपर हिट है, मजा आता है सुन सुन के। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ रवि मोहरे जी का, सुनना चाहते हैं दिल इबादत कर रहा है, बिल्कुल धड़कने में।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और मनीषा जी लिखते हैं धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रवि मुखर्जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी है, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संध्या पंडित जी लिखते हैं कि सुपर से ऊपर वाला गाना है, दिल इबादत कर रहा है। और पिकुराज जी लिखते हैं कि दिल इबादत कर रहा है मेरा फेवरेट गानों में से एक है, थैंक यू सो मच इसे सुनवाने के लिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: आरजे अमन सर जी रवि मुहाले जी अपने गाने में शामिल किए, इसका पहले दो भाई गाने अपने गाने में शामिल किए थे, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ रहा सुन के, धन्यवाद देते हैं। मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग करें। ईश्वरलाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं और सही समय पर जुड़े क्योंकि अगला गाना आप ही का प्ले होने वाला है। आमना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन सर आपकी सुंदरता की मूर्त वाकई बेहद खुशकिस्मत है, जिन्हें आप जैसा बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, अब पर हर दम उनका नाम और दिल में एहसास जज्बातों की गहराई समझने वाला और हर मोड़ पर दिल से वो कदर करने वाला वो साथी मिला है। उनकी सादगी, उनकी प्यारी सी मुस्कान और हुस्न की रूहानी चमक आपके इस वो सच्चे इश्क के साये में और भी निखर उठती होगी, क्योंकि ऐसी पाक मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती है। नहीं जी बिल्कुल सही कहा, बहुत थैंक यू सो मच इतने प्यारे लाइन के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है, ओके जी। और मनीषा यहाँ पे शर्मा जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा फेवरेट गाना सुनवाने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ ईश्वर लाल जी की, क्या नाम है, ईश्वर लाल मेहर जी की। ईश्वर लाल मेहर जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और रवि मुखर्जी क्या कहते हैं, इनके पहले सुन लेते हैं ना।
1: दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल मध्य प्रदेश।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे यानी कि पीकू राय जी लिखते हैं कि जब मैंने ये तेरा नाम लिया, सुपर सुपर सुपर सॉन्ग लगा मुझे। और सरोज भगत जी क्या कहते हैं,
3: अरजय अमन सर जी ईश्वर लाल मेहर जी अपने गाने में शामिल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन के जी। बिल्कुल सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने, मैं सभी को थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे गाने को भेज कर और प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं। और इट्स कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम लिखते हैं कि बहुत शानदार सॉन्ग और असलम का तो कोई जवाब नहीं है, माशाल्लाह। अच्छा सच में का। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद है, दिल इबादत कर रहा है। और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सर जी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि ईश्वर लाल मेहर जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, आमना खान जी सुनना चाहती है बहुत ही प्यारा गाना फिल्म दिल मांगे मोर से। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और आमना खान जी बहुत ही प्यारे प्यारे अल्फाजों से शुक्रिया अदा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इतने प्यारे प्यारे अल्फाजों के लिए नवाजिश करम, मेहरबानी आपकी। और एम डी जमुई जी लिखते हैं कि मैं भी सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच जमीरुल जी, आपका अगला गाना अभी का है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, अमना खान जी अपने गाने में शामिल करने को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि अमना खान जी के पसंद दिल मांगे मोर से बहुत लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और पिकुरा जी लिखते हैं अमना खान जी के पसंद, ओ माई गॉड बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू अमना जी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, शुक्रिया इस गाने के लिए। और शेर सिंह सैनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है शेर सिंह सैनी जी आपका भी। लिखते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूँ रामपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ईश्वर आल जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद लाजवाब लगी है, ओके। और सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि ओपनिंग गाना एम यानी कि ताहिर जी के पसंद बहुत ही प्यारा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और अभी अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अवधेश कुमार। अच्छा, अवधेश कुमार नाम है इनका, और स्पेलिंग इन्होंने लिख दिया अवधेश कुमार, हम अवधेश पढ़ेंगे ना बताइए। तो अवधेश कुमार नाम है इनका, बहुत बहुत वेलकम है आपका, स्पेलिंग मैं ठीक कर दूंगा मत घबराइए। और मनीषा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा मुझे, आमना जी का धन्यवाद देते हैं। और सॉरी, जुड़ चुके हमसे नाम है इनका दशरथ काले, बहुत बहुत वेलकम है दशरथ काले जी आपका। और लिखते हैं कि बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आमना जी लिखते हैं कि सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है एमडी जमरुल जी का है, जमरुल जी सुना चाहते हैं फिल्म उड़ान से, ये बहुत ही प्यारा गाना है।
2: मैं मोहम्मद जमीरुल तमिलनाडु से।
0: मैंने आपका ऑडियो नहीं प्ले किया क्योंकि उसमें शोर

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और इस वाला दिल के सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच जमरुल जी। और संध्या पटेल जी लिखेंगे अमेजिंग सॉन्ग चल रहा है और फिकुरा जी लिखेंगे चाहो तुझे गाना सच में बहुत ही मस्त लग रहा है। और शिल्पा बहन जी जो चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। शिल्पा बहन जी लिखते हैं सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि ऑसम सुपर लाजवाब वाह वाह वाह मजा आ गया। और ये फिर सुन लेते हैं क्या कहते हैं भाई।
1: अमन जी मेरी दुकान पर कुछ कन्यावन आती हैं और आपका प्रोग्राम जब चलता रहता तो ये भी सुनती है। अच्छा। तो ये कुछ कहना चाहती है, बोलिए कन्यावन।
2: हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, मैं हूँ पल्लवी।
3: हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं हूँ श्यामू।
0: ओके
1: धन्यवाद सर
0: का, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ये पल्लवी जी और एक और नाम था मैं तो सुन नहीं पाया सही से। फिलहाल अगला डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो दत्तक कदम जी का है। दत्तक कदम जी सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा नगमा, एंजॉय कीजिए।

0: मतलब AI वाला गाना है, उन्होंने कहा कि 2026 का गाना है ए मेरी जाने बाहर। वैसे तो जाने बाहर वाला गाना कोई और मुझे मिल रहा था, पता नहीं यही गाना था या नहीं, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा है कि ए जाने बाहर मुझे एक बार आई लव यू यानी कहने वाला, इसमें कुछ आई लव यू वाला तो बात कुछ आ नहीं रहा है, शायद मैंने गलत गाना प्ले कर दिया। अगर हो सकेगा तो लिंक मुझे भेजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा और फीडबैक शामिल करता हूँ।
1: अरजे अमन सर जी, दत्ता कदम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि दत्ता जी के पसंद मुझे पसंद आई है, और पेकू राय जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत लाजवाब गाना चल रहा है। और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि दत्ता कदम जी के पसंद मुझे अच्छी लगी। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे अवधेश कुमार जी का है, सुनना चाहते हैं एक दिलरुबा है। ओहो

और देश कुमार जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। मीना कुमार लिखते हैं कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, गाना सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मीना जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, क्या लाजवाब गाना है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बेवफा फिल्म का ये गाना मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। और कुंता बेनर्जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं कुंता बेनर्जी, सभी को नमस्कार कह रहे हैं। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि क्या गाना है, सुपर से भी ऊपर वाला ये गाना चल रहा है। और मनीषा जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे भी बहुत प्यारा लगता है, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो प्ले करूंगा मैं, किनका वो मैं प्ले करने वाला हूँ, अपने दीदी यानी कि संध्या पटेल जी का दिल तेरी दीवानगी में खो गया।

0: हो गया है और दत्ता जी नितिन किशन ने पंडित जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और जितेंद्र जी लेते हैं कि नाइस सॉन्ग झक्कास गाना मजा आ रहा है सुन सुन के। और यहाँ पे सर्वेज भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, संध्या पटेल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। था
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे पीकू राय जी लेते हैं दिल तेरी दीवानगी में खो गया है गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और अभिषेक तिवारी जी लेते हैं कि ओके ठीक है। और यहाँ पे मीना जी लेते हैं वाह क्या खूबसूरत गाना है मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी लेते हैं कि अभी तक जो यानी चार पाँच गाने लगातार प्ले हुए सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे चल रहे थे।

मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। शेर यानी यहाँ पे शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि दिल तेरी दीवानगी में खो गया है, गाना बहुत ही प्यार लगा है। और कुंता जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो कुंता बेनी जी का ही है, सुनना चाहती है। देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा।

0: बिल्कुल तुम्हारे सिवा मैं तो सिर्फ तुम्हें ही मांगता हूँ ना। और फिलहाल यहाँ पे फिगुरा जी लिख देंगे, देखे भी तो क्या देखे, तुम्हारे सिवा गाना बहुत ही मस्त लग रहा है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय मां सर जी, कुंता बिन्नी जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाना है। ओके, और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम एकदम झकास होने वाला है जी, क्योंकि 90s के सभी गाने ओ, और प्रोग्राम अच्छा ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जी। बिल्कुल सही आपने इस वाला जी देखेंगे, मेरा फेवरेट गाने सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच। और सोनू गौतम जी मैं बता दूं कि मैं आज का प्रोग्राम कैंसिल करने वाला था, मतलब यानी कि मेरी यानी कि मम्मी करी थी कि आज का प्रोग्राम यानी कैंसिल कर दो, तो मेरे सिर में दर्द है। हमने कहा कि नहीं आज मेरे सिर में तेल लगाइए, मैं इसी तरह से जाके मैं प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि आज 90s का प्रोग्राम है, आज मैं कैंसिल नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा, क्या करूं। और कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा। अगला जो डिमांड है हमारे विकास गडकरी जी का है, सुनना चाहते हैं नजर के सामने जिगर के सामने।

बिल्कुल नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है तो वो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। और जफर रंगरेजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा चल रहा है। और पिपरा जी लिखते हैं कि विकास जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद इस गाने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि आशिकी का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अमीना कुमार जी लिखते हैं कि ओके। और यहाँ पे यानी कि कुंता बिना जी लिखते हैं कि नजर के सामने जिगर के पास वाला गाना लाजवाब लगा। अगला जो डिमांड है वो जाकिर खान जी का है। जाकिर खान जी सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना, और ये गाना मुझे सच में बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास हैं और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। जी बिल्कुल, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे विजय राज जी लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, और क्या बात है सर, सॉन्ग सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और लिखते हैं कि साथ दोगे, साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, और प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर। राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दिल से लगाओगे तो आएंगे जरूर। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना चल रहा है, और पिकू राय जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद मुझे मस्त लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। मीना इब्राहिम जी इस बार जी लिखते हैं कि अमन जी खाना खाने अभी थोड़े, मैं 11 बजे के बाद खाता हूँ। वैसे यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूँगा शेर सिंह, नाम है शेर सिंह सैनी जी, और शेर सिंह सैनी जी सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। कुंता जी देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे, नाम है स्वरूप कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है स्वरूप कुमार जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि यानी कि वीर सिंह जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे शेर सिंह जी की पसंद है, शेर सिंह, ओके। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन जी अभी जो गाना जो चल रहा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ओके। और पिकू राय जी लिखते हैं कि ये शेर सिंह जी के पसंद बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और जितेंद्र जी लेते हैं वाह क्या फरमाइश, मजा आ गया। जागीर खान जी लेते हैं थैंक यू सो मच मुझे मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे गजानंद जी के ग्रुप की डिमांड है, और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं मिसाल अंग जी। तो आप दोनों की पसंद पे सुनवा रहा हूँ ये बहुत ही प्यारा गाना, जिसका नाम है खाली दिल नहीं जान भी अमन का। एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और मीना जी देखते हैं कि अच्छा हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। और ये फीडबैक
1: जय अमन सर जी का, जानन सलोकर जी का, सभी भाई अपने गाने में शामिल के सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानन जी से क्या, अमन जी का प्यार नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और

0: ये यानी कि ये फिल्म जो यानी कच्चे धागे का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और जितेंद्र जी देते हैं कि हमारे गजानंद जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: नजर के सामने जिगर के पास ये गाना सुनाने के लिए आरजे अमन भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सौरभ कुमार जी देते हैं कि भाई मुझे वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट में गाना की डिमांड कर दीजिए, कोशिश करूँगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। और ये फिर
2: गजानन जी ग्रुप और मिसाल अंगद जी दोनों की मिलीजुली डिमांड बहुत ही लाजवाब, सुनवाने के लिए शुक्रिया। और अमन सर जी आपने प्ले करके हम तक पहुँचाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे इन पीपुर ऐसी लिखते हैं कि गजानन जी की ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना प्ले हो रहा है, मज़ा आ रहा है सुन सुन के। और यहाँ पे कुंता बेनी जी लिखती है कि आदरणीय गजानन जी की ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारी है, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। मिसालंग जी क्या कहते हैं, कैसे लेते हैं।
3: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूँ अमन सर जी। और कार्यक्रम से मैं भी शुरू से जुड़ गया हूँ, लेकिन फीडबैक नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे इधर गणपति बप्पा विराजमान हो रहे थे, आरती कर रहे थे, इसलिए हमने गाने सुन रहे थे लेकिन फीडबैक नहीं दे पाया था। लेकिन अमन सर जी अभी जैसे आरती ख़त्म हुई तो हमारा गाना भी आपने सुनवाया, तो अमन सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना सुनवाया। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया है, मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद दूंगा। अमन सर जी आपने हमारा गाना बहुत खूबसूरती से सुनवाया, इसलिए फिर से आपका एक बार धन्यवाद।
0: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पे शेर सिंह सैनी जी देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और तो आपका यानी कि काजल झका जी आपका वो कौन सा गाना है प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और यहाँ पे नंदलाल जी लिखते हैं कि हंस राज हंस की आवाज़ में लाजवाब गाना लगा, मजा आ गया सुन के। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि झक्कास गाना चल रहा है, मजा आ गया सुन के। अगला जो डिमांड है वो हमारे इष्ट कुमार जी का है, सुना चाहते हैं गीता था जिसके लिए।

0: बिल्कुल एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। गाना सच में बहुत ही अच्छा लगा है और बिल्कुल अजीत सिंह मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और
1: दोस्त
0: और स्वरूप कुमार जी, मैं आपसे कितना बनता हूँ, सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। सॉन्ग रिक्वेस्ट सबसे नीचे मोर लिखा होगा, रेडियो हॉटस्टार के ऐप में सबसे नीचे मोर लिखा होगा दाहिने साइड में, वहाँ क्लिक कीजिए और सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट का, उस पर क्लिक कीजिए और उसको भर के भेज दीजिए। जरूर मैं आपके गाने को प्ले करूंगा, यहाँ पे मैं भूल जाऊंगा बिल्कुल। और ओके और राहुल पासी जी लिखेंगे इट्स कुमार जी का गाना, मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको। जितेंद्र जी लिखेंगे सुपर से ऊपर वाला गाना है। और यहाँ पे मीना कुमारी जी लिखते हैं एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और विकास गडकरी जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, थैंक यू सो मच। हमारे अगला जो डिमांड है वो हमारे इन पीपू राय जी का है, सुनना चाहते हैं वो लड़की बहुत याद आती है।

0: जाती है।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दिया। अगला यहाँ पे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। और कुंता जी लेते हैं कि सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे चल रहे हैं, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और अमीना कुमार जी लेते हैं कि वो लड़की बहुत याद आती है, गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और विष्णु जी लेते हैं कि जी हाँ, ये गाना सच में बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे पिकुरा जी लेते हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद। मीना जी लेते हैं, वाओ बहुत ही सुंदर डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और राहुल पासी जी लेते हैं कि ये कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये कच्चे धागे वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सरोजी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो यानी कि विजय कुमार जी का है, और सुनना चाहते हैं कि तू बुला दे, तू बुला दे, तू मिला दे, वैसे कुछ गाना है, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना रहा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं गाना सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पिकू राय लिखते हैं कि सुपर से ऊपर वाला गाना है, धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि तू मिला दे वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है, नाम है मनीषा शर्मा जी और सुनना चाहती है माहिया। इंजॉय कीजिए मनीषा शर्मा जी माहिया।

माहिया, मजा आ गया सुन के गाना। और गजानन जी लिखते हैं कि तुम मिलाते वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और यहाँ पे पिकुरा जी लिखते हैं कि माहिया वाला नंबर वन सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है। थैंक यू सो मच मनीषा शर्मा जी। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हुआ कैनाथ जी का है, सुनना चाहती है दिल में दर्द सा जगह है, और स्पेशली डेडिकेट है एम ताहिर जी को। इंजॉय कीजिए।

प्रणाम मोहब्बत है। और यहाँ पे मनीषा जी लेते हैं कि मनीषा शर्मा जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, मजा आ गया है। और विष्णु जी लिखते हैं कि इतने अच्छे गाने चल रहे हैं कि हम क्या ही बताएं, मजा आ रहा है सुन के। और पिकू राय लिखते हैं कि दिल में दर्द सा जगह है, गाना सुपर सुपर सुपर हिट लगा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, बहुत ही प्यारा गाना है। और जितेंद्र जी लिखते हैं शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और गजानन जी लिखते हैं कि महेश शर्मा जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है। और महेश शर्मा लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले करें। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है महेश कुमार जी का है, महेश जी सुनना चाहते हैं लाल लाल होटे पे गोरी किसका नाम है। ओह

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और राहुल पासे जी लेते हैं दिल में दर्शा जगह है गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और पिकुरा जी लेते हैं महेश जी के पसंद मुझे पसंद आई है और विष्णु चंद्र जी लेते हैं बहुत ही प्यारा गाना प्ले हो रहा है और जितेंद्र जी लेते हैं नाइस सॉन्ग। ओके अगला जो डिमांड है आर्य सिंह जी की।
1: अस्सलामु अलैकुम। अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी तमिलनाडु चेन्नई से। आज के गाने के बोल रहेंगे तेरा रंग बल्ले बल्ले, फिल्म का नाम है सोल्जर, आवाज़ें दी है जसविंदर नरूरा जी ने और सोनू निगम जी ने। डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे आदित्य जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी मेरे दोस्तों को।

0: वेलकम बैक रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं आशुक देश मुझे।
1: धन्यवाद आरिफ सिंधी जी, बहुत ही बेहतरीन गीत सुनवाया और गीत में शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी, आपका भी अशोक देशमुख जी। और त्रिपुरा जी लिखते हैं कि नंबर वन गाना चल रहा है, सुपर हिट पसंद है। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि लाल होटे पे गोरी किसका नाम है गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तेरा रंग बल्ले बल्ले भी गाना बहुत ही प्यारा। अगला जो डिमांड है वो इन विष्णु चंद्र जी का है, सुनना चाहते हैं मिर्ची रे मिर्ची कमाल कर गई और इनके धोती को फाड़कर सच में रुमाल कर गई है।

0: ये थोड़ा सुनते हैं उफ उफ मिर्ची।
1: मिर्चे हाय हाय मिर्चे बुह बुह मिर्चे उफ उफ मिर्चे बुह बुह मिर्चे।
0: फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि यानी कि शब्द कम है, भावनाएं बहुत सारी हैं आज की ये शाम, वो खुशियों से बहुत प्यारी हैं और क्या कहे। अमन जी इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी देते हैं मस्त मस्त गाने चल रहे हैं, मजा आ रहा है, धन्यवाद देते हैं। और पिकू राय जी लिखते हैं मिर्ची वाला सॉन्ग तो बहुत ही सुपरहिट लगा है। और हमारे यानी रॉय परमत जी जुड़ चुके हैं, बहुत दिन बाद भाई कहाँ थे, बहुत बहुत दिन बाद जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करूंगा गोविंदा खंडाडे जी का रामा वो रामा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

मैं कहूँ रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास यानी कि पीपुरा जी लिखते हैं गोविंदा खंडारी जी का गाना, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे राय पापा जी लिखते हैं आप तो कंटिन्यू रहना है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए गोविंद खंडारे जी लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमनसा जी मेरा गाना सुनवाने के लिए, राधा कृष्ण को भी लेते हैं बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हुकुम चंद जी लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा गाना प्ले कर दिया आपने, और गजानंद जी लिखते हैं कि नाले में चला गाना मुझे अच्छा लगा है, और विकास गडकर जी लेते हैं आर जी अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, नानजी के सभी गाने सुनकर बहुत मजा आ रहा है, और पिकुरा जी लिखते हैं कि नाले लाने में चला एक नंबर गाना सुनने को मिल गया है, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं भाई गोविंद।
1: अमन जी मेरी दुकान पर फिर एक छोटी कन्या आई है और वो आपको एक पोयम सुनाना चाहती है, तो सुनाओ पोयम।
2: हम छोटे मोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी शेर जाएंगे, सुने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश किसान बढ़ाएंगे।
1: नाम बता दो।
2: दिशा।
1: ठीक है, ये है दिशा। धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत भाई इनकी वेलकम है इनका, और बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए, बहुत ही प्यारा पोएम इन्होंने सुनाया, मजा आ गया। कुंता जी लिखते हैं कि सभी डिमांड बहुत ही प्यारे प्यारे, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा, दो दोस्तों की डिमांड है हमारे राधा कृष्ण गोप जी का और निशांत राय भोले जी का, दोनों की एक ही डिमांड है और वो डिमांड है तुम तो धोखेबाज हो भाई, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। फिलहाल गाना सुनते हैं, इंजॉय द ट्रैक।

0: गाना प्ले करने के लिए। और गाइस जाना चाहिए की राधा कृष्ण को भी निशान रहे बोले जी, आप दोनों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: अमन शर्मा जी सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक सुपर रहे हैं, शुक्रिया।

0: अगला डिमांड हमारे अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी और सर्वेश भगत जी की।
1: नमस्कार अमन सर, मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल।
0: अच्छा।
1: और गाने का बोल है तु तु तु तु तु तारा।
0: अच्छा।
1: फंस गया सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
2: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
2: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बोल राधा बोल फिल्म, और गाने का बोल है तू तू तू तारा। न तोर दिल हमारा।
0: जी बिल्कुल।
2: पाउडर स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत जंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सुनील कुमारी, मुन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाठक जी, संजय जी, आरजे संतोष कुमार जी, मुन्ना जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आदित्य जी, और आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी, आरजे एमएस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिए।
0: ओके जी। और आत्माराम जी।
3: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मनकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके स्टार ऑफ द 90 शो में मैं एक अच्छा सा ओल्ड इज गोल्ड मूवी

0: बिल्कुल तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा, वैसे फीडबैक बहुत सारा आया हुआ है। मीना जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गाना है, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चरण जी लिखते हैं कि तुम तो धोखेबाज वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और समुंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है समुंदर सिंह जी आपका। गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय शुक्रिया समूह जी, सुरेश भगत जी, आत्माराम जी के पसंद मुझे पसंद है, धन्यवाद देते हैं सभी को। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी, वेलकम है आपका राजीव तिवारी जी। सुरेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर। हमारा फरमाइश, तीनों भाई का फरमाइश, अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी और हम, आपको लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे पिकुरा जी लिखते हैं तू तू तू तू तारा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं?
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उनको हम धन्यवाद देते हैं। निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके जी धन्यवाद देते हैं आपका भी। जितेंद्र जी देते हैं बहुत ही बड़ी डिमांड के लिए, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आत्माराम जी क्या कहते हैं?
3: प्यारे अमन सर जी, दिल से शुक्रिया जी आपका, क्योंकि आपने हमारा सॉन्ग बिल्कुल चला दिया सर, हमारे तीनों भाइयों का, जैसे कि अशोक देशमुख है, सर्वेश भगत जी है, हम है, सैयद जुनू जी है, सभी को शुक्रिया, नमस्कार।
0: ओके जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी, सभी को धन्यवाद। को कुंता जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके अगला जो डिमांड है हमारे सोनू गौतम जी का है, सुनना चाहते हैं ये प्यार दिलों का मेला है। अच्छा जी,

0: वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे नंदलाल जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी की डिमांड बहुत ही प्यारी थी और यहाँ पर राजीव तिवारी जी लिखते हैं धड़के दिल बार बार बहुत ही सुपर हिट गाना है और यहाँ पे इन पीपुराज जी लिखते हैं कि धड़के दिल बार बार बहुत ही सुपर हिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। सोनू गौतम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है वो काजल झटका जी का है, क्या सुनना चाहती है सुनाते हैं आपको।
1: नमस्ते गुड इवनिंग आपको रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी से। मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए। सॉन्ग है बोंगे मेगा कंगना तेरे बिना सजना नींद नहीं आती और ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी सबसे पहले आपको। और रेडियो हॉट स्टार जितने दोस्त सुन रहे हैं जितने दीवानी दीवानियाँ सुन रहे हैं सभी को सुना दूंगी।

वेलकम बैक रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दो कुत्ता जी देते हैं बहुत ही प्यारी पसंद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ को लिखते हैं कि काजल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, उनको धन्यवाद। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये काजल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद लगा है, बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाओ सुपर पसंद, थैंक यू सो मच। इसी बात अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल जी का है, सुना चाहते हैं रात दिन सुबह शाम वगैरह वगैरह, इंजॉय कीजिए।

0: आशीष जी नितिन जी, ये बोले मेरे कंगना वाला गाना बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं काजल ठाकुर जी को। कृष्ण जी नितिन के काजल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और यहाँ सोनू गौतम जी थे कि यानी कि काजल ठाकुर जी को पसंद एकदम सरकार लगी, उनको धन्यवाद। और यहाँ पे
1: अमन जी सुनिए एक बात, पति और पत्नी में तलाक हो गया।
0: अच्छा।
1: तलाक के बाद किसी ने पत्नी से सवाल पूछा, अब आप अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? पत्नी बोली, बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। और पति से भी सवाल किया गया कि अब अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगे, तो पति बोला, रेडियो हॉट स्टार सुन के धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: कहाँ से लाते हैं, माय गॉड। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये तेरे नाम जिंदगी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, उनको धन्यवाद। और कुंता जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद बहुत ही प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और यहाँ पे पीकुराय लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद सुपर अमेजिंग। नंदलाल जी लिखते हैं सर जी गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काजल झका जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और विष्णु जी लिखते हैं कि मैंने ये तेरे नाम जिंदगी वाला गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मैं बता दूं कि किन का मैं प्ले करने वाला हूँ। ओके,
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: ओके जी, तो अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे एमडी फैज आलम जी का। ओके, तो सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए इनका गाना तेरा चेहरा।

और यहाँ पे राजीव जी लिखते हैं कि ये तेरा चेहरा फैजी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, उनको बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए। और यहाँ पे पूरा लिखते हैं कि तेरा चेहरा इस कदर बहुत ही प्यारे डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विष्णु जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना। अगला जो डिमांड मैं प्ले करूंगा अनिकेत जी का, अनिकेत मतलब यहाँ पे ये स्वरूप कुमार जी

बिल्कुल एक चेहरा ख्वाबों ख्यालों में आया। वैसे गाना बहुत ही प्यारा है और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद देते हैं। और दीपक जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, कोशिश करेंगे। और राजीव जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर सुपर सुपर हिट प्ले हो रहे हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि दूरवादियों से आ रही है पायलों की संसन, गाना बहुत अच्छा लगा है। और पीकू राजी लिखते हैं कि ये भी मेरा फेवरेट गानों में से एक है। अगला जो डिमांड है राहुल यादव जी, ये सुनना चाहते हैं थोड़ा सा चेहरा से चेहरा, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक है। राजीव तिवारी जी लेते हैं कि हमारे यादव जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि फूलों सा चेहरा तेरा ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे पिपुरा जी क्या कहते हैं सुनते हैं।

0: सुपर सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले हुआ है इस बार।
1: ओके जी, और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि फूलों ये फूलों सा चेहरा चला गाना अच्छा लगा है। अगला डिमांड है वो हमारे यानी कि किशन पाल शक्कर जी का है, सुनना चाहते हैं कितना।

बिल्कुल जी कर देखता रहूं। वैसे फिलहाल फीडबैक में आ रही सिंधी जी लिखेंगे, अमन जी मैं देर से फीडबैक दे रहा हूं क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था और आपने मेरे पसंद का गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और पिकू राय लिखते हैं कि ये कितना प्यारा रब ने बनाया गाना, बहुत ही प्यारा है। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि राजा हिंदुस्तानी का सुपरहिट गाना सुनने को मिल रहा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि ये कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया गाना, सच में बहुत ही दिल को छूने वाला है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करूँगा वो है यानी कि नाम इनका सिया जी, सिया जी सुनना चाहती हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट हिट राजू दीवाना मंदिर और कुंता जी देते हैं कि सुपर हिट लाजवाब डिमांड करें, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल लिखते हैं कि चांद देखा याद आए सूर्य तेरी, बहुत ही प्यारा गाना है। और शेर सिंह यानी कि सैनी जी लिखते हैं कि अमन जी सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे इन प्ले हो रहे हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ यानी कि रोजित खान जी का, रोजित खान जी सुनना चाहते हैं कोई लड़की है, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और यहाँ पे हमारी नंदनी माँ लिखती है कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम रहा बाबू, और थैंक यू सो मच माँ जी। और यहाँ पे पिकुरा लिखते हैं कि कोई लड़की है गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि चाक धूम धूम वाला गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल

क्यामत क्यामत। और यहाँ पे अनुकुंदा जी लिखते हैं कि दिल तो पागल है का गाना मुझे अच्छा लगा है, और सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और पिकुराय लिखते हैं कि ये तेरे लिए गाना बहुत ही प्यारा था, मजा आ गया सुनकर। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि 90s के शो सुपर हिट जा रहा है। और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि यह भी गाना बहुत ही प्यारा लगा। अगला जो डिमांड है वो यानी बिंदिया जी का, बिंदिया जी सुनना चाहती है ये बहुत बहुत ही प्यारा गाना है, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवारा बना और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, गाना बहुत ही प्यारा है। विष्णु जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं और पिकू राय लिखते हैं कि आके तेरी बाहों में ये गाना मुझे बहुत ही सुपर हिट लगा है। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले कर रहा हूँ शिल्पा बहन जी का, सुनना चाहती हैं जब कोई बात बिगड़ जाए। इंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे यानी कि शिल्पा बहन जी देखेंगे। और बिल्कुल राय लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा गया है, उनको धन्यवाद देते हैं। और विष्णु जी लिखते हैं कि गाना तो सर जी बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाए गाना बहुत ही अच्छा लगे, धन्यवाद देते हैं। और किशोर पाल जी लिखते हैं सुपर कार्यक्रम चल रहा है। और कुंता जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है आरजे सोनी जी, ये सुनना चाहती है एक बहुत ही प्यारा गाना और समवन स्पेशल के लिए डेडिकेटेड है, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: मिल कर धक धक बोल न कब तक आहें भरेंगे हम प्यार में तेरे सनम।
1: बहुत सारे फीडबैक आए हुए शामिल करता हूँ मैं, और सबसे पहले यहाँ की फिगुर लिखते हैं कि अरिजीत सोनी जी के पसंद सुपर हिट लाजवाब है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे राधा किशन को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे बन के लिए, थैंक यू अरिजीत सोनी जी। और शिल्पा पे लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। कुंता जी लिखते हैं कि अरिजीत सोनी जी के पसंद बहुत खूबसूरत है, और अरिजीत वंश का जी लिखते हैं कि अरिजीत सोनी जी के पसंद बहुत ही लाजवाब है। और ये
2: आरजे अमन सर जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार लाजवाब रहा, एक से बढ़कर एक डिमांड मिली आपको, आपने प्ले करके सुनवाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया, और सारे दोस्तों का भी शुक्रिया। अभी जो गाना चल रहा है आरजे सोनी जी का, वो भी बहुत ही प्यारा गाना है, सुनवाने के लिए शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
1: लग रहा है कि आप मुंह में पानवा चबाए हुए हैं। वैसे यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो जारा, नाम है जारा जहां। ओके जारा जहां जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं तो।

0: अच्छा
1: तुमने अगर छोड़ी नहीं बेरुखी अपनी तो छोड़।
0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट चाचा दीवाना वाला और पिकुरा जी लिखते हैं कि ये जारा जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि ये तुमने अगर प्यार से देखा नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है उस सर्वजीत शेट्टी जी का मैं सुनवा रहा हूँ, ये सुनना चाहते हैं जा सजना तुझको भुला दिया। ओ हो, क्या बात है जी, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं। आदित्य लिखते हैं कि ओके ओके समझ गया। और यानी कि यहाँ पे पिपरा जी लिखते हैं कि सच में गाना बहुत ही अच्छा लगा, जा सजना तुझको बुला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और विष्णु जी लिखते हैं कि अमन जी आज के सभी गाने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है राहुल पासी जी का। राहुल पासी जी एंजॉय कीजिए और मुझे जाना पड़ेगा भाई।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना रहे हैं। और आरिफ जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया ओहो इस गाने के लिए भी। और यहाँ ऋतिक राज जी लिखते हैं कि छोड़ कर ना जाओ पिया सुपर पसंद है। और यहाँ पे कुंता बहन जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तुझको मैंने दिल दिया गाना बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले कर रहा हूँ संदीप सुतार जी का। संदीप सुतार जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: ये बदामी और बांध करो है पॉप तेरा पॉप चलाऊ कंजरा।

0: साहब की अगला जो डिमांड है इनका है, दीपक
1: कुमार भैया हमारा गाना सुना दीजिए।
2: मैं हूँ पल्लवी केवट।
3: मैं हूँ सलोनी केवट।
4: मैं हूँ पल्लवी केवट।
0: आप दोनों की सभी के पसंद पे सुनवा रहा हूँ, आप सबका ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास और सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: अमन सर बहुत ही लाजवाब सॉन्ग चल रहा है और हॉट स्टार ने दीवाना ही बना दिया।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोपी देते हैं कि लाजवाब निर्माण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हें पीकू राय जी देते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगे। थैंक यू दीपक कुमार गायकवाड़ जी का। और ये फीडबैक
2: अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया और ये गाना हमारी जितनी भी आरजे हैं आरजे वंशिका आरजे आकांक्षा वो सभी को ये समर्पित है गाना। धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: ओके जी। और अगला और मतलब आखिरी डिमांड ही समझिए इसको क्योंकि इसके बाद से मैं डिमांड में नहीं ले पाऊंगा सॉरी। तो ये है हमारे अभिषेक तिवारी जी का है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।

ओके जी, और आखिरी गाना मैं यानी कि नीतू जी का प्ले करके जा रहा हूँ, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, और तब तक मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

Mm-hmm.

चकाचक हिरलो पान चबा आ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता है।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.